ናይ እንሲነብ ፈህ ቲየ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካር ኩረኒ ቲየ ደባሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ መረጀ ልባሕረይን የልተቅያን ኢከላንገ ደካንዱ ኢበሂ ኮራ ኢካንዱ ሀደባ ፈኑቪየ ए देखांडु हिंगमुंगोस बद्दलुवे बैनहुमा बर्ज़खुल्ला यबगियान ए देखांडु देमेदुगा हुरहेवे ए देखांडु वेस एककांडु अनेककांडेगे मच्चका अरायन नुगने फबी अई आलाई रब्बिकुमा तुकद्धिबान ए जिन्नी नाय इंसी ने फहे तिया देबामी हुं दगु को इंकार कुरनी तिया देबामी हुंगे वेरी रसकलांगे निअमत तकुगे तेरें कौं कौं निअमत कं हिये यखरुजु मिन्हुमा लुलु वल मर्जान ए देखनुं रम्मुताई मर्जान फैदावे नुकुमे

0: रंग दो दी।
1: रंदो दे मे प्रोग्राम गहिमरालो मे ननी खलफा राष्ट्रुन गे तेरें उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्न गे हया पला गुले रीति वाहकता मे वाहके की गाफ को किरे अब्दुल्लाह फारूक हसन दिबे भातर जमा को नि वाफा वाहके मे दिस वाहके अकबर दल कुरानी अली राजी